चरण च पाय विच दियो खड़ोआ, रोग सोग सा मिट गए नित नवा नरोआ। दिन रैन नाम ध्याए दा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नानका सोई फिर होआ। किथों उपजे कह रहे कह माए सुमावे, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे। कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावे, अगम अगोचर साहेब दूसर लवे न लावे। सज पूवे गुर उपदेसया नानक सुनावे, बसंत बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मोलिया आकाश, घड़कड़ मोलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जय देखो तै रहा समाए रहाओ। द्वितीया मौले चार वेद सिमरत मौली स्योंक तेब, शंकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माघ जहां जाएगे तै जल पखान तू पूर रहोगे सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहां तो जाइए जो ईहां ना होए सतगुर मैं बलिहारी तोर जिन सकल बिकल प्रम काटे मोर रामानंद स्वामी।

मंड तैसे संत जना राम नाम ना छाड़े गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न हुए ता

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर मेल सतसंगत परम पद पाया आत्म राम रहया भरपूर रघाओ सतगुर संत मिले सांत पाइये इल भगत दुख काटे सब दूर आत्म जोत पई प्रफुलत

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सहसृढ़ का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, जो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत्य कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सफल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते

करे सवरता जो सबरी दमपान। प्रभु भुलाए उजड़ पाए नेफल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़या जिस करी कृपा भगवान। हुन सतगुर सेव परम पद पाया उधरिया सगल विसवान। क्या हम कथ किश कथ नहीं जाने प्रभ पावे तिवे बुलान। सा संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारग महला पंजवां अब मोरो नचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहो रगाओ। पुआर कन्या जैसे संग सहेरी त्रिया बचन उपहास कहो। जौ सुर जन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कोठारी चढ़ो कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय गए बारे तब ते थान थिरो। जौ दिन रैन तउ लो बजो मूर्त करी पलो। बजावन गारो ऊर सुधारो ता फिर बाजना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो ता को पिन दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मैं डारियो अंबे अंब में।

ते ना ही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कुमावत गावत दो काटे ताके जन्म मरन जा को पयो किरपाल बीठला तेन हर हर अजर जरन हर से अगाने तेज सुमाने मुक्ते ना ही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जाप उदरन सारग महला पंजवा गायोरी मैं गुण

चरण मोरलो माथा, हमरे मस्तक संत तरे हाथा, साधे मंत्र मोरलो मनुआ, ताते गत हो त्रै गुनिया, भगते दर्श देख नैना।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई। दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहु विद उमकाई रखाओ। चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई। जतन करो तो मन नहीं तीरे को है रे संत मिलाई। जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई। एक निमुख प्रेदर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई। मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई। प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही। अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही। करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही। कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही। मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही। तर मराए जा पकस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही। सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन्म बलिहारी जो अल्प रहे मन माही। सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई। रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई। करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई। जे प्रसाद मिल गए।

अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई रखाओ। भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जन नाई, ऊच ते ऊच नाम दे समुंदर सी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तन तन साधन का यो मन संतरे नाई, संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारग महला पंजवां मनोरथ पूरे

साध समागम कोड़ बैकुंठे पाए रघाव दुलाब दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवारे महापत्ते पादक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अभिमाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग

खुल्यो कर्म पयो पर गासा काट काट हर घर डीठा रखाओ पार ब्रह्म आजोनी संपो सर्व थान कट डीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्राप चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी की ये सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लय मजीठा सारग महला पंजवा हर घर नाम दियो गुरसाथे निमुख बचन प्रेही रे बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रगाओ किरपा निदान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे एक आस मोय तेरी स्वामी और द्वितीय आस बेराथे नैन त्रिप तसे दिग दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नारक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पय लाते सारग महला पंजवा अरे मूड़े आन कहे कत जाई संग मनोहर अमृत है रे भूल भूल बिखाई रगाओ प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते ते सिंहरुच नहीं राई मोन सिंह बाबर मन मोयो झूठ ठ गौरी पाई पयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन सिंह बन आई सगल निदान करे मैं पाए कहो नानक जोत समाई सारग महला पंजवा ओ अंग प्रेपीत चीर पह लरिया जो तो बजन दियो मेरे सदगुर तो मैं साज सी गरिया अरगाओ हम भूले तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उदरिया हम नीच बिरख तुम मैं लागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया गुर किरपाल नानखर मिलो तो मेरी सूख से जरिया सारग महला पंजवा मन ओए दिनस तन परवाना सब ते करी संयोग सुहावे सदगुर संग गयाना रगाओ तन सुभाग तन सुहागा तन दिल जिन माना यो मन तुमरा सब गृह तन तुमरा हियो कियो कुर्बाना कोट लाख राज सुख पाए एक निमक पेख दृष्टाना जो कहो मुखो सेव के बैसिए सुख नारग अंत न जाना सारग महला पंजवा अब मोरो सहसा दुख गया और उपाव सगल त्याग छोड़े सदगुर शरण पया अरगाओ सर्व सिद्ध कार्य सब सबरे अंग रोग सगल की खया और पराध खिन में खो पई है गुर मिल हर घर कह पंच दास गुर वसगद की

प्रभ मेरो एक पुत्र सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमर कहां गुन गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लाड आवे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बार्ग की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पै लिवलाई, सार्ग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइये, आस न अवर कहू की कीजे, सुखदाता प्रत्याये रगाव, सुख मंगल कल्याण जिसे कार, तिस की सरणी पाइये, तिसे त्याग मानक जो सेव है, तो लाज लोन हो जाइये, एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद पाइये।

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई कहो नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख हरी रगाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान चिमरत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

चोरी अंध कूप मैं पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

छोड़ो कपट होए निर्वैरा, तो प्रसंग निहारे सतन वणजो सतनक संचो कबू न आवो हारे। खात खर्चत किश निखुटत नाही।

सेव करत अनसेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने को सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सारग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

मन तन धन तब तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। ज्यो तू रखे तिवखी रहना तुमरा पहने खाए, साध संगत के बल बल जाई

पंजवा त्रिसना जलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात अंत पर तिहार रगाओ सांत सुख न सहज उपजे ए इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम क्रोध है जार संसार सागर दुख व्यापे हो।

काम क्रोध निंदा पर हरिय काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

अनद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ। प्यार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी सत साह संगे हो, सत तेजन जिन प्रतीत उपजी

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी कर तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन वेदया कर सर्वस अंतर राखी वेद पुराण सिमरत साधु जान।

गाय बिनसी सब अवमानी रगाव तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सस दा सुहागन तेज साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साग तुम्हें संग राखन हार तुम्हें जगदीश रखाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी पुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रभ नानक सेजन दर गए माने सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति असार नरक उधर प्रमंत जल तो जमे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार बिना सदगुर बूझ नाही ता मोह महा अंधार बेट गौरी खाए मुठ कितना सिरजनहार गोविंद गुप्त होय रहे न्यारो मातंग मत अंकार कर कृपा प्रसंत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार सार्ग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सदगुर प्रसाद शुभ वचन बोल गुण अमोर किं करी विकार देखरी विचार गुर शब्द ध्याए मह

कीड हस्त पाखाण जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ। ने दूर पूर हजूर संगे सुंदर रसाल तू, ने बर्न बर्न ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू। सार्ग महला पंजवा करत केल बिखे मेल चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर। नौपरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे रघाओ। तीन पौने लपटाए रही काज कर्मना जात सही उन मत अंध तंद रचित जैसे महासागर होहे। उदरे हर संत दास काड दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा हर बिन तेरो को ना सहाई। कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रघाओ। तन धरणी पर संपद सगरी जो मान्यो अपनाई। तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लबटाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई। नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई। सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लबटाही। या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही रघाओ। कां को तन तान संपद का की का स्यो नेहो लगाई। जो दिसे सो सगल बिनासे जो बादर की शाही। तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही। सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे। माया माद बिखे रस रचियो आराम सन नहीं आवे रघाओ। यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे। जो उपजे सो सगल बिनासे रहन न को उपावे। मिथ्या तान साचो कर मान्यो

प्रोजात्या हा निर्मायल संगी चंचल मत त्याग पव पंजन पाया एक शब्द लेव लागी हर अचाख त्रिखा निमारी हर मेल लहे बड़पागी अपरत सिंच परे सुबर सार गुरमत साच निहला मरत नाम रते ने केवल आजुगा दयाला मोहन मोहलिया मनमोरा बड़े पाग लेव लागी साज विचार केलब दो काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा शब्द विचार परम पौ पंजन अवर न जान्या दूजा मनुआ मार निर्मल प चीनिया हर सरते अदकाई एक से बन में अवर न जानना सदगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एक को जानिया सुबर परे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अक

तीजा अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन मेरे हर के नाम वडाई हर बिन अवर न जाना कोई हर के नाम मुक्त गद पाई रगाव शब्द पौ पंजन जमकाल निखंजन हर सेती लिवलाई हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहा सुमाई भगता का भोजन हर नाम निरंजन पहनन भगत बडाई निज करवासा सदा हर सेवन हर दर शोभा पाई मानमुख बुद्ध काची मनुआ डोले अकथ न कथे कहानी गुरमत नेत्र घर मन वसया अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई सतगुर में रही गे सदे अपने जिन हर से ती लिव लाई मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई हर सर सागर सदा जन निर्मल नावे सहज सुपाई शब्द विचार सदा रंग राते होमे तृष्णा मारी अंतर ने केवल हरव्या हवे आत्म राम मुरारी सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पाणे दुबदा मैल न पावे जब झूठी गुण अवगुण ना पछाणे आपे मेल लय अकथ कथिए सच शब्द सच बाणी नानक साचे सच सुमाणे।

मन मेरे हर की अकथ कहानी, हरिंदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरले जानी रखाओ, हर गैर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नावे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल न होई, ना बिना सब जग है मैला, दूजे परम पद कोई, क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ न पाई, होए दयाल कृपा कर हर जियो, नम होए सकाई, सच्चा सदाता कर्म विदाता, जिस पावे ते नाए लाए, गुरु द्वारे सोई बूझे, जिसनु आप जाए, देख विस्माद जो मन नहीं चेते, आवा गौण संसारा, सतगुर सेवे सोई बूझे, पाए मोह द्वारा, जेंदर सूझे से कदे ना बिगाड़े, सतगुर बूझ बुझाई, सत संयम करनी किरत कमावे, आवन जान रगाई, से दर साचे साज कमावे, जिन गुर

आधार नानक आप सदीव है, पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है, अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है, सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा, पद स्यों कर जाई गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई मत पंखे रूवस होए।

दुख च जम्मण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मगला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देहे जा जियो विच्चों कड़िये पसु परे आ जाए अग्गे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजमो जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसवीं दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वासी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्तर ही जय पांडे, और बहुत सिख क्या दी जय पौड़ी, पूब तराजे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत बधाएं दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्तर ना विस है, बहु प्रीत लगाया, वेख दिया ही माया तोहे गई, पछते पछताया।

फिर हुए ना बिनासा, हर से तीरंग राव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कबे ना उतरे गुरमुख पर गासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मान ले सब दरखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसम पावे, आपे बगसे मेल लय आपत गवावे, मिलिया कदेरा विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिस आप बुझावे। पौड़ी

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी हो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरी आवली, आन जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए, हर से ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए, हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिन्ना

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन हो गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिर इस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जे ही रुत काया सुख तेह, तेहो जे ही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुर अपने प्रीतम, हर वर आन मिलावे। सोन कन घोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावे। बरस कना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही अरे। गुरमोही मन हरस लीना रहाओ, सह सुखी वर कामन प्यारी। जिस गुरबचनी मन मान्या, हर वर नार पही सोहागण। मन तन प्रेम सुखानिया, अवगुण त्याग पई बैरागण। अस्थिर वर सुहाग हरी, रोग विजोत कदे न व्यापे। हर प्रव अपनी कृपा करी, आमन जान नहीं मन निचल। पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख। तन सुहागण सच सही, मलार महला पहला। साची सुरत नाम ने तृप्ते, होमे करत गवाया। पर तान पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया। शब्द चीन पै कपट न छूटे, मान मुख माया माया। अजगर पारल दे अदपारी, मर जन्मे जन्म गवाया। मन भावे शब्द सुहाया।

ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त पाए गुरदर्श दिखाया जो जुग भगत सुपावी हम थारे तिर पावन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहोर ना पवजल फेरा अपने पिरघर देख विगासी तौ तन साज सीगारो अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पई बंधन गुर खोले साबद।

आओ दुख सुख दोनों सम कर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई है सत संगत गुर प्यार तहे निसला हर नाम पदार्थ गुरदाता देवनहार गुरमुख सिख सोई जन पाए।

गुरमुख राम नाम मन पीजे हर सेती लिवलाई रहाओ। मेरा प्रभ आत अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई, सच संयम करनी घर कीर्त हर सेती लिवलाई। आपे शब्द तज साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मिलाई, देही काची पौन मजाए गुरमुख अमृत पाई। आपे साजे सबका रे लाए सो सच

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लबटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हरस पीवे रसन रसाए, कोड़ मध्य किसे बुझाई, आपे बगसे देव डियाई, जो तुर मिलिया तो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई।

नींद न पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिनसे दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए, बहुवद थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार, विख्या मायर

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, सुन लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहस्य, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक ले

होता बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे ता ओ त्रिप्त अघाई। हम बारक पिता प्रवदाता फूले बारक अनक लख बरिया। अनठौर नाही जय जाता रघाओ चंचल मत बारक बपरे की। सर्प अगन कर मिले माता पिता कंठ लाए राखे। आनंद सहज तब खिले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी। तिस बारक पूख कैसी नवनिध नाम निदान गृह तेरे। मन बांछे सो लैसी पिता कृपाल आग्या ए दीनी। बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाहै। मोहे हृदय बसे निद चरना मलार मोहल्ला पंजवा। सगल विधि जोर आहार करे तजो सगल अंदेसा। कार्ज सगल आरंभ्यो करका ठाकुर का पहारूसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी भोर पया मैं प्रेम मुख पेखे। गृह मंगल सोलावी अराव मनुआ लाए सवारे थाना। पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निव पाए जापरे आए बसे गृह आसन। तब हम मंगल गाया मीत साजन मेरे पए सुहेले। प्रभ पूरा गुरु मिलाया सखी सहेली पए आनंदा। गुर कार्ज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुखदाता। छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा। राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते। कृपा निध छोड़ आन को पूजे आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते। अनक बार प्रमे बो जोनी।

आतन साधु संग उधारे रखाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर घाट। नाम रास संजी कर जम स्यो जाओ न जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण निध खाट। शरण गई अचुत अवनासी किरव काढ़े है शाट। कल कलेस मिटे दास नानक बौर न जूनी माट। मलार महला पंजवा बहुविध माया मोह हुए रानो। कोड़ मदे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो। रखाओ एत उत डोल डोल शरम पायो तन तन होत बिरानो। लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रतारो साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा दुष्ट मोए बिख।

चित आवे आड़ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गामन सुनन सब तेरा पाना, हुकम बूझे सो साच समाना, जप जप जीवे तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दोसो करते हो मर जाए, पाने बक्स पाने देश जाए।

एक वर्ष से अमृत धार सगले जी जंत त्रिप्तासे कार्ज आए पूरे रासे सदा सदा मन नाम समाल गुरपूरे की सेवा पाया आयते उते निभगय नाल रखाओ दुख पन्ना पै पंजनहार अपने जिया की कीती सार।

की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार मखला पंजवा गुरसरनाई सगल निधान, साची दरगे पाएगे मान, परंप दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा साल आहे, नाम निधान जपो दिन राती, मर चिंदे फल पाए रहाओ, सदगुर जेवड़ अवर ना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए, जन्म मरण दुख ते रख है, माया बिख फिर बौड़ ना चख है, गुर की महिमा कसन ना जाए, गुर परमेश्वर साचे नाए, सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग राची, गुर पूरा

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गामनी नीकी रहाओ तोनत ललत गुनाग अंक पांत बोविध रूप दिखामनी निकी गिर तार फल जल पावन परपुर कट कट लालन शावनी निकी साध संगरा मैया रस पायो नानक जाके पावनी निकी मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल अंतर तारे रहाओ दर्श सबलो दर्श पेखेओ गए किल विख गए मन निर्मल उजियारे बिस्म बिस्मे बिस्म पई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होय आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो मिल संत

हर सिउं रहे समाए रघाउ। सतगुर ते ज्ञान उपजे तां ए संसार जाए। सतगुर ते घर बुझिए गर्भ जोनी न पाए। गुर प्रसादी जीवित मरे मर जीवे शब्द कमाए। मुक्त द्वारा सोई पाए जे विच्चों आप गवाए। गुर प्रसादी शिव कर जमे विच्चों सख्त गवाए। अचर चरे बवेक बुद्ध पाए पुरख पुरख मिलाए। तातुरबाजी संसार अचेत है चले मूल गवाए। लह हर संगत पाइए कर्मी पल्ले पाए। सदगुर वेण किने ना पाया मन वेखो हृदय विचार। वड़पागी गुर पाया भवजल उतरे पार। हर नामा हर टेक है हर घर नाम आधार। कृपा करो गुरु मेलो हर जियो पावो मोह द्वार। मस्तक ललाड लिखिया तुर

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा, सावन आया हे सखी,

शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सुवारिया से भगत तुद पाम दे सच्चे नाहे प्यारिया सतगुर सेवन अपना तिना विटो हो वारिया सलोक मोहला तीजा ऊन व आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदार अली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिसनू मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी तो हरसदा सरेवी है जे करतन लागे वार आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासो लेखा निबड़े बगसे सिबत भंडार ओथे हाथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करता।

0: गाओ।
1: गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ। नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन मसाया।

ते पौ उपज पाइये मोह द्वार पाए ते सहज पाइये मेरे ज्योति जोत अपार पाए ते पै जल लंघिए गुरमति विचार पाए ते निरपो पाइये।

अकल मन गोर न मानी। मन कमीन कम तरीन तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया। पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया। सग नानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

पवनपति जांचे कार कूर्मा पाल सहस्र फनी बासक से जवालुआ अठारे पार बनस्पति मालनी चिनमें करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नग पर सेव जाचे सुरसरी सप्त समुंद जाचे कड़थली एते जी जाचे वर्तनी सो ऐसा राजा तिर पवन तनी जाचे कार निट वर्ती अर्जन त्रू प्रहलाद अम्बरीक नारद निज सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बाण वहिला एते जी जाचे है करी सर्व व्यापक अंतर हरी।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे

तार अनक स्वांग काशे पेह तारी जैसो सा तैसो धृटारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सज करणी सार कानड़ा मोहल्ला पंजवां तेरो जन हर जस सुन तो मायो रहाओ मने प्रगास पे प्रभ की शोभा जल कद पेखो आयो सब ते परे परे ते ऊंचा गैर गंभीर अथायो ओत पोत मिलो भगतन कौ जनस्यो परदा लायो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाज समायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां संतन पै आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटत होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो ताटे रोग पय मन निर्मल हर हर औषध खायो अस्त पय बसे सुखताना भौर नकत हूतायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिवतना मायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम कौ बन आई जो प्रकीनो सो पल मान्यो ए सुमत साधु ते पाई सब मैं रव रहा प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा मोहल्ला पंजवां ठाकर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय ले तरना तुमरो बाल तुम संग सुहेले।

आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पदत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकी दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस तानड़ा मोहल्ला पंजवां साध संगत निधर को नाम संग सहाई जी के काम रखाओ संतरेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल बिख हरे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा मोहल्ला पंजवां साधु हर हरे गुण गाय मान तन तन प्राण प्रभु के सिमरत दुख जाए रखाओ ई पूत कहां लोभ आवे एक सियो मन लाए महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद त्याय सगल त्याग शरण आयो नानक लेहु मिलाए कानड़ा मोहल्ला पंजवां पेख पेख बिसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रखाओ आन दा सुख सहज मूर्त तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जांत गुण रवंत दुख नस है रिद पय अंत सांत अमृतारस पीओ रसना नानक हर अंग रात कानड़ा मोहल्ला पंजवां साजना संत आओ मेरे रहाओ आनदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाए परेर संत चरण तरो माथ है चांदना गृह हुए अंधेर है संत प्रसाद कमल बिकस गोविंद भजो पेख नेर है प्रभु कृपा ते संत पाए वार वार नानक ओ बेर है कानड़ा मोहल्ला पंजवां चरण शरण गोपाल तेरी मोह मान तो परम राख लीजे काट बेरी रखाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निध पतत उदारन कोड़ जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दिरड़ायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोड़ जावता सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ मुए अनाथ दाह जन तेरा अबर ओट सगली मुए त्यागी और परम काटे प्रसिमरत ज्ञान अंजन मिले सोवत जागी तू अथाहो अद बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रापागी कानड़ा मोहल्ला पंजवां कुचल कठोर कपट कामी ज्यो जाने त्यों तार स्वामी रखाओ तू समरथ शरण योग तू राखे अपनी कल तार जाप ताप नेम सुसंजम नाही इन विदे छुटकार गर्त कोर अंध ते काढ़ हो प्रभु नानक नदर निहार कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार चौथा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरणार है। कहो नानक प्रा पय किरपाला, मगन पय हीर दरसार है। कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन कै संगे, थोरे काज बुरो कै फेरो। अरहाओ ना बिना जेतो लपटायो, कशु नहीं नाही कज तेरो। आगे दृष्ट आपत सा प्रगट, ई गाम होयो परम अंधेरो। अटक्यो सुबंता संग माया, देवन हार दा तार बसेरो। कहो नानक एके पारु सौ, बंधन काटन हार गुर मेरो। कानड़ा महला पंजवा, बिखे दाल।

औरंगी सब एकत बचन चलावै गो, गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो। गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो, जी जंत सब सहट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो। बिन गुर भेटे को मैल न पावै, आए जाए दुख पावै गो। अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो। सतगुर मिलत महा सुख पाया,

नारायण सगले जंत पजो गोपालय जब तब संजम पूर्ण कालय नित पजो स्वामी अंतर जामी सबल जन्म सबाया गोविंद गायगे नित ते आई है प्रवाण सोई आया जब ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चालय बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बंद उपालय मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मेरे परमानंदा प्रमिले स्वामी सुख गामी इस मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बौड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए विकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी पुरख परम।

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आद सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक महला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखिया पाएदा साब सेट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन

चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेश घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुरु मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा श्लोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना

उत्तम घर प्रभ नाम है। गुरभजन सुभागे लीता दुख दाल दिन सबो लह गया। जा नाओ गुरु घर दीता सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा मन अंतर होम में रोग है। ब्रह्म फूले मन मुख दुर्जना नानक रोग वन्याय मिल सदगुर साधु सज्जना। महला चौथा मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने नानक सो प्रामय मिले। हो जीवा साध सुने पौड़ी जगन्नाथ जगदीशर करते अपरंपर पुरख अतोल। हर नाम ते आवो मेरे गुरसिखो हारूतम हर नाम अमोल। जिन त्याया हिरदे दिन सरात ते मिले नहीं हर रोल। वडभागी संगत मिले गुर सद गुर पूरा बोल। सब त्यावो नर नारायणो नारायणो जित चूका जाम झगड़ चघोल। सरोक महला चौथा हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन जे कर दूजा देख दे जन नाम।

हे स्वामी, हम पाथर रख बुढ़ थई, कल्याण मोहल्ला चौथा, हमरी चितवनी घर प्रव जाने, और कोई निंद करे घर जन की, प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने, रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत, जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान, हर सेवा ते कालज होए ना सके, चरणी आए पवे हर जाने, जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पैकाने, ताको कोई अपर न सके, जा की भक्त मेरा प्रमाण, हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमक पछाने, ताते जन कौ अंध पया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने, तुम हर दाते समरथ स्वामी, एक मांगो तुम पासो हरदाने, जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मुझे हर चिराने।

सदगुर प्रसाद तेरे मान हर घर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ इत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हें समान जद कता तद पेखिए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण मोहल्ला पंजवां गुरनाद तुन आनंद वेद।

रामो राम रवीजै, साधु साध साजन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजै, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को था।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझै डंड तरमरा एका दीजै। सब तीर्थ वर्त जग पुन किए हिवे गाल गाल तन चीजे। अतुला तोल राम नाम है गुरु।

रामा राम राम पूज करी जे मन तन अर्प तरो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दरड़ी जे रखाओ ब्रह्म नाम गुण साग तरोव नित चुन चुन पूज करी जे आत्म दियो दियो हो आत्म रस लागे पूज करी जे विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल बिचर बिचर रस पीजे गुर प्रसाद पदार्थ पाया सदगुर को यो मन दीजे निर्मोल कत हीरो नीको हीरे हीर बधीजे मन मोती साल है गुर सबदी जित हीरा परख लईजे संगत संत संग लग ऊचे जो पीप पलास खाए लीजे सब नरमे प्राणी उत्तम होवे राम नामे बास बसीजे निर्मल निर्मल कर्म भो कीने नित साखा हरी जड़ीजे तरम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बेकार बा जग दीजे एक जोत एको मन वसया सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजे आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजे ना बिना नगटे नर देखो तिन कस कस नाक वढ़ीजे सागत नर अंकारी कहिए बिन नावे त्रिग जीवीजे जब लग सास सास मन अंतर तद बेगल सरन परीजे नानक कृपा कृपा करता रहो मैं साधु चरण पखीजे कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तुवीजे केल बेख दैन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजे रखाओ मंगत जन दीन खरे दर ठाडे आतरसन को दान दीजे त्रागे त्राए सरन प्रभ आए मुको गुरमत नाम जरड़ीजे काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उड़ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुरपूरा काड़ कढ़ी जय अंतर अगन सबल अद बिघया हे शीतल शब्द गुर दीजे तन मन सांत होए अदकाई रोग काटे सूख सवीजे जो सूरज करण रविया सरबठाई सब घट घट राम रवीजे साधु साध मिले रस पावे तत निरकर बैठिया पीजे जन कौ प्रीत लगी गुरसेती क्यों चकवी देख सुरीजे निरखत निरखत रैन सब निरखी मोह काढ़े अमृत पीजे सागत स्वान कही गए।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद राग।

अंधेर अंधी वापर सगल लीजे खोए यो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवरनाश करणहार अपार रघाओ पाताल पुरिया एक पार हो वह लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे हो वह होर दुखा ते सुख उपज सुखी हो वह दुख जित मुख तू सालाई है तित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित नाम न उपज से तन होए खुवार प्रभाती महला पहला जय कारण बेब्रह्म उचरे शंकर छोड़ी माया जय कारण चित पय उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरगे साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े हार मत पावे कोई रघाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोड़ पंचासा जे को एक करे चंगयाई मन चित बहुत बभावे एते गुण एतिया चंगयाइया दे ना पछोतावे तो सालाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओ ना कहो जम की तलबना होई प्रभाती महला पहला जाके रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा

करमना ही तरमना ही नाही सुचमाला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जाके बरतना ही नेम नाही नाही बकबाई गात अवध की चिंतना ही सदगुरु फरमाई जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर प्रवान बिख अमृत दुसम कर जान क्या कहिए सर्वे रहया समाय जोग।

मांगो हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत करे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिते हुआ सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होए बा अवरण करना जाए रहाओ जैसे हर की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी न

जात जन मने पूछिए सच कर लिहु बताए, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती मखला पहला जागत बिनसे मूठो अंडा, गल फाही सिर मारे धंधा, आसा आवे मनसा जाए, उर्जी ताणी किशना बसाए, जागस

पाई, सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे टोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनू देवे, तिस वसे मन आई।

आए बहु रंगी सिद्ध उपाय प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जिया नो रिजक दिया कली काल में रव्या राम काट काट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विज कल युग काट काट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरणाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

बिन नावे को साथ ना संगी, ज्यो मन देखै पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिव लावे, सतगुर पूछ सहज कर पावे, राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए, सतगुर भेटै सोजी पाए, सच्चे नाम रहे लिव लाए, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे, निरकरवास अमर पद पावे, तां दर सच्चै सोभा पावे, गुर सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करै जे कोई, होमे मेरा सब देखोई, निर्मल नाम वसे मन सोई, इस जग

टूटा गांडा, जब तब संजम नाम संभाल लिया, अपने ठाकुरो नजर निभा लिया, मंगल सुख कल्याण तसाई, जय सेवक गोपाल कुसाई, प्रसो प्रसन्न भय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल, होम जग पुरता पूजा, कोट तीर्थ स्नान करीजा, चरण कमल निमख हृदय तारे, गोविंद जब सब कार्य सारे, ऊचे ते ऊंचा प्रवथान, हर जन लावे सहज ध्यान, दास दासन की बांछो तूर, सर्व कला प्रीतम भरपूर, मात पिता हर प्रीतम नेरा, मीत साजन परवासा तेरा, कर गए लीने अपने दास, जप जीवे नानक गुणतास, विपास प्रभाती बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मरण जीवन की शंका नासी, अपन रंग सहज प्रगासी, प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा, राम रतन पाया करत बिचारा रहाओ, जय आनंद दुख दूर पयाना, मन मानक लिखता तुलकाना, जो किश हुआ तो तेरा भाणा, जो इव बूझे सो सहे समाणा, कहत कबीर केल बख गए कीना, मन भया जग जीवन लीना, प्रभाती अलो एक मसीत बस्त है, अवर मुर्ख किस केरा, हिंदू मूर्त नाम निवासी,

के पांडे नाग पोज कुंभारे समय सच्चा एको सोई इसका किया सब कश होई हुंग पुशाने सो एको जाने बंदा कहिए सोई अलो अलख न जाई लखिया गोर गुड़दी ना मीठा कह कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन डीठा प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना विचार जो सम एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे मुल्ला कहो न्याओ खुदाई तेरे मन का परमन जाई रहाओ पगर जीव आनिया दे बिनासी माटी को बिस्मिल किया ज्योत स्वरूप अनहात लागी कहो हलाल क्या किया क्या उजू पा किया मोत होया क्या मसीत सिर लाया जो दिल में कपट निवाज गुजारो क्या जका बेजाया तू ना पाक पाक नहीं सूझया इसका मर्म न जानिया कहे कबीर पिस्त ते चूका दोज किस्यो मन मानिया प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवा कर अद पद आसमाई सिद्ध समाज अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई लेहो आरती हो पुरख निरंजन सब गुर पूजो पाई ठंडा ब्रह्म निगम विचारे अलख न लखिया जाई रखाओ तत तेल नाम की आबाती दीपक दे उजियारा जो तलाए जगदीश जगाया बूझे बूझनहारा पंचे शब्द अनहद बाजे संगे सारंग पानी।

गुसाई मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव माने घाट माने पाठ माने है पासारी माने बासे नाना भेदी परमत है संसारी गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमानी सब हुक्म हुक्म आपे निरपो समत बिचारी जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी नामा कहे जग जी मन पाया हिरदे अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ बावन बीखू बाने बीखे पालते सुख लागला सर्वे आद परमलाद।

अंत बार संग तेरे यह एक जात है। बिखिया भी ज्यों बिसार प्रभु कहो जसहिए तार, नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नामा रे मन कौन कद होए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बेखिन सु अत लुभान मत नाहिन फेरी, रहाओ मांस को जन्म लीन।

माता कतांच पिता कतांच बनता विनोद सुत कतांच प्रात मीत हित बंधव कतांच मोह कुटुंबयते कतांच चपल मोह निरूपं पेखंते त्यागं क्रोध रहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्धं अच्युत तने त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधव त्रिग स्नेहं बनता विलास सुत त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कहे साध संग स्नेह सत्यं सुखिंग बसंत नानक मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं वर्धंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित पवनं गणंत स्वासा पयान धर्मं पता।

पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वचल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है,

तम प्रखोतमं तब प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं परन पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं सिरजंत रतन जन्म चतुर चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोत दानं परापूर बेण कुंचंते महीपते विपरीत बुद्धि अंग मार।

गोविंद नाम च पंत मिल साध संग है, नानक से प्राणी सुख बासन है, तैना साध समूह सूर अजितं संगनाहंग तानिमरता आवदे गुण गोविंद रमण ओढ़ गुर शब्द कर चरमण आरूढ़ ते अश्वरथ नग है।

साध संग खल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम तारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है उपदेशं।

कंद मूलं बसंते समीप कह रह ततरगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं छिद्रं कोड़ विघ्नं अपराधं किल बिख मलं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निरास आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परमंग ताकत पिसरंगता सुजन है अस्तित्वं सोग हरखं पय खीणंगता निर्भवय पय अटवियं महानगर वासं धर्म लखेण प्रामय साध संगम राम राम रमणं।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

च करणा न उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत निर्त्यं क्रोत जथा मरकट है अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवंग नर है दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखया क्रोत ए लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जी या भो प्रकारं अनक पांद बोडोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सार समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत शत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है अवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बो भोगण परम भयान उद्यान रमणं मां बिगट असाध रोगण है पैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण है करुणामय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है सार संगेण तरणं नानक महासागर पय दुत्र है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर का सोई ज तन बताए सखी प्रयोग पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहाल लिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

क्या करे जो राम न करे सहाय। जे जे डाली भगत हरो सोई मुर मुर जाए। कबीर अवरे कौ उपदेश ते।

कस्तूरी भया पवर पए सबदास। ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यो त्यो राम निवास। कबीर गह गज परे कुटंब कै कांठे रह गयो राम। आए परे तरम राय के बीचे धूमा ताम। कबीर सागत ते सूकर भला

ते धर्म है, जहां चूड़ ते पाप, जहां लोभ ते काल है, जहां खिमा ते आप। कबीर माया तजी ता क्या पया, जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मुनवर गले, मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिले, शब्द जो भाया एक, लागत ही पोए मिल।

आवे दर्जन होत है निर्दावे रहे निसंक। जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

पंडित जल मुए मूर्ख उभरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोट के मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। ए त्युत कभे ना डोलई जिस राखे सिरजनहार। कबीर कहानी पीड़ते सदगुर लिगे छड़ाए। परा पूर्बली पावनी परगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए। ना हर भज्यो ना खत फट्यो काल पहुंचो आए महला पंजवा। कबीर कूकर भौंकना तरंग पिछे उठताए। करमी सतगुर पाया जिनहो लिया छड़ाए महला पंजवा। कबीर धरती साध की।

तन तपै तनूर ज्यो बालन हड बलन पैरी तक्का सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन तन ना तपाए तनूर ज्यो बालन हड ना बार सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निहाल थौ टूड़ेन दी सजना सज्जन महंडे नाल नानक अलख ना लखिए गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ मैं जानिया वडहंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जर्मना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर करे जे तस पावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो पाही वाल पचास क्योतन लहरी गढ़ते सच्चे तेरी आस कौन सो अखर कमन गुण कौन सो मणिया मंत कौन सो वे सो हों करी जित वसे आवे कंत निमड़ सो अखर खमन गुण जेबा मणिया मंत ए त्रे पैणे वेस कर तां वसे आवी कंत मत हुंदी होए ए आना तान हुंदे होए निताना अणहुंदे आ वंडाए ओ ऐसा भगत सदाए एक फिक्का ना गालाए सब नाम है सच्चा तनी याओ ना कही ठाहे मानक सब अमोल वे सब ना मन मानक।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बे आपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन ना

गुर जगत फिरन सी अंगरो राज योग लेना करे सदा आकल लिव रहे कर सु इच्छा चार है द्रम सपूर जो ने वे खवे कस बेमन बीचार है ए तत जान्यो सर्वगत अलख बिडाणी सहज पय संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण ते पायो सत संतोख गराज लयो हर परस्यो कल सुमुल वे जन दर्शन लेने पयो मन विश्वास पायो गैर गो हदरथ दियो गल नाल तन नठ्यो अमयो अंतरगत पियो रिद विकास जागयो अलख कल तरी जुगंतर सदगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दार्द हरन पेखंते कमल त्रसन सद रंग सहज कल उच्चर जा जंपो लहने रसन नाम अवखद नाम आधार आर नाम समाध सोख सदा नाम निशान सोख है रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरे बो है नाम परजन पायो सब प्रट्यो रव लोए दर्शन परसे है गुरु के अड़सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सोख है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखाण दर्शन परसे है गुरु के सच जन्म परवान अमेदित शुभ करे हरे अग पाप सकल माल काम क्रोध अर लोम हो वस करे सबे बाल सदा सुख मन वस है दुख संसार है खोवे गोर नाम निद्री आओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेवी है अहे निस सहे सुपाए।

प्रसाद तोई पुरख सेवर साचा जाका एक नाम अचल संसार जिन भगत पवजल तार सिमरो सोई नाम प्रधान चित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सबुधि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव केरण प्रगट संसार है साग तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पोबर पश्चिम जय जय कार्ज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सिमरे सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरे नखेत्र अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर सूर नाम उल्लास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शेषन काज समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पवजल तरया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा काल कबीर केल बखरया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया तित नाम लागते तीस त्यावे जति तपी सुर मन वसया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सदकर संग उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया नाम केत संसार किरण सुर तर सख उत्तर दक्षिण पुब जेस पश्चिम जस पख जमत इसके अथ जित नाम हरदे निवास सुनल गण गंधर्व छे दर्शन असस पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो तोई ना भगत फौजल हरण गुर अमरदास तय पायो नाम त्यावे देव ते तीस हर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारे ते नाम समाध्यो हरक शोक सम कर सगारे नाम श्रोमण सर्वमय भगत रगे लिवतार तोई नाम पदार्थ अमर गुर उस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वय लीना ये तीर जो तुर तवल तुजा छेद बैकुंठ बीना परसे संत प्यार ये करतारे संयोग सगुरु

पैर समाध सना हो, ज्ञान गए आसन चढ़यो, धर्म तनक कर गयो, भगत सील है सर लड़यो, पै निरपो हर अटल मान, शब्द गुर ने जा गड्यो, काम क्रोध लोभ मोह अवत, पंच दूत बिखंडयो, पलो पुहाल तेजो तना, निरपतनाथ नानक बार, गुर अमरदास सच सल पान, तय दल जितो इव युद्ध कर, कण हर बूंद बसो रो मावल, कुसुम बसंत गणंत न आवै, रस करण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

तिदर जावे, नाम सो निधान पावे, गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवे जियो, सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, धर्म कर्म पूरे।

सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा ताप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी फिर थप्यो हर का नाम अखय निद अप्यो अप्यो हर नाम अखय निद चो जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूपोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जप करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुर बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार आगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दुष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रया पूर बोविद वर्णंग सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सा संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन भय क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड़ सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई इंकनी शब्द चंतकार खेर पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कौ कौन मेड़ सके ईस बम ज्ञान ध्यान हरत ही ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो आराम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेद तरयो हर नागस हरयो नख बदार जियो संक चक्र गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन पुंद दसन प्रिया सिद कंठ मार मुकट सीस मोर पंख चाहे जियो बेव जीर बड़े तीर
ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸ਼ਾਏ ਜੀਓ ਆਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸਹਨ ਕੈ ਸਾਏ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੇ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਂ ਕੁਵਰਲ ਨੇਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਣ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋ ਬਰਹਾ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਹੁਰ ਕਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸ ਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੁਛਾੜ ਤੋਹ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀ।

तदकार मन गए अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रसदा सलामत, कहे न सके को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत, तिनको मोह भया मन मत का, 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सबहु कौ तद का, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगास।

पासा गुरमुख संगत सबे विचार हो। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना तो जल थल गगन पयाल पूर रहया। अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्माद क्रुद राधक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाईगे परमार्थ तत् संगत स्थिति मन खजना। किया खेल बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद अज कोई न जाने शिव ब्रंत तर ध्यान नित्य जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर

पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। एक ओंकार

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चितराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सदगुरु जम काल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई जो मन जानदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलत मोहित गए अंत बेली को ना सखाई सदगुर सेवे सो सुख पाए नव से मन आई नांग से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए होमे अंतर मैल गए शब्द न काढे धोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन ना करे विश्वास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा हूं सब बलिगारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास माया पुयंगम सर्प है या केरिया बिखमाए देखा मारण हर नाम गए गुर गारड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए मिले सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे सोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है निध हिरदे घर लिव लाए निर्वैरे नाल वैर रचाएद अपने कर लू की लाए अंतर क्रोध अंकार है अन दिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल निद पौक दे बिख खादे दूजे पाए बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए बेसवा केरे पूत ज्यो पिता नाम तुझ जाए हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नावे जम पुर जावे नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे चिंता ताप तरह गए तामन पया आनंद गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवन अपना गुर सबदी विचार सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार ऐथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह समाओ वडभागी नाम त्याया

वे बंगली पौन असले की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम माद माद वगाव है ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थप है गोंड करी अरदेव गंधारी

पौरानद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाय सरस बाण ओ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सुवारी उन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कई अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मेल

हे एते कीते होर करे हे ताख न सकै के ही के जेवड़ पावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ तां लिखिया सिरगा वारांगा वार सो दर केहा सो कर केहा जित पै सर्ब समाले वाजे नादा नेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी सो कहियन केते गावन हारे गावै तुहनो पौन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इंद आसन बैठे देवत्या दर नाले गाव है सिर समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पंड रखी सर जो युग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अठसल तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गाव है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदासा साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरन पर झोली ध्यान की करै बिभूत किंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश उतस आदेश आदा नीला नादा नाहत जुजगु एको वेस पोत गया दया भंडारण कड़कड़ वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिदवरा साध संजोग विजोग दो कर चलावै लिखे आवै भाग आदेश उतस आदेश आदा नीला नादा नाहत जुजगु एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओना नदर ना आवै बहुता एहो विडाण आदेश उतस आदेश आदा नीला नादा नाथ जुजु एको वेस आसन लोए लोए भंडार जुग छपाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश उतस आदेश आदा नीला नादा नाथ जुजु एको वेस एक दूजी बहु लख हो हे लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया होया अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टै संसार जे साथ जोर कर वेखै सोए नानक तुम नीच ना कोए राती रुती रुती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जूत के रंग तिनके नामा ने का अनंत करमी करमी होए विचार सचा आप सचा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का अख हो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्मे घड़त घड़ी है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती शिव केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद को डानंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घड़त घड़ी है बहुतानूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछा पिछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरासदा की सुध कर्म खंड की बाणी।

तिथै भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथै तंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिमै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिन कहो नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पमन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे, देवत्यां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर, जो जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुर्ग मश पयाले। गावन तुदनो रतनो पाए तेरे, अठ सठ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोत महाबल सूरा, गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन, से मैं चितना आवन। नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहेब। साचा साची नाई, हैपी होसी जाए ना जासी। रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती। कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता अपना। ज्यो तिस दी वड्याई, जो तिस पावै सोई करसी। फिर हुक्म ना करना जाई, सो पात साहो सहा पत साहेब। नानक रह नरजाई, आसा महला पहला। सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तिर रहे समाए।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमागम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुध जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

क्या गुण आख बखाना। जो सेवै जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुगत पय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी,

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तू द्यापे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन्ना मृतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्ति।

इहां खाड चलो हरलाहा, आगे बसन सोहेला। औद घटे दिन सुरण आरे, मन गुरमल का सवारे रहाओ। एहो संसार बिकार संसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगा।

सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार, जा पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए, ओना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाउ पूजियै नाउ मनियै, अखंड सदा सच सोए, खेहू खेर लाइयै ता जियो केहा होए, जलियां सब सियाणपां उठी चलिया रोए, नानक नाम विसारिया डर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

काल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जितस पावै उजली सतसर नावन जाओ। पूरो पूरो आखिया पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों काटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिल है अंक सहे लिड़िया, मिलके करे कहानिया समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी, तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया, मिठा बोलनी पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती, केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै, सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जय उबरी होमे मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी, गुरमुख शब्द समाए रहाओ। केता आखण आखी आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थी अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सबदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुट सी सहज मिलया सुख होए। निज कर महल पछाणी है नजर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतर है बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर त्यागयास, नानक देख दिखाई है हो सत बलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठ्ठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना थी है पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दर गै झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

अंतर की गत जानिए गुरमिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दया मरमार। अनहद शब्द सुहावने पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तै हो मैं होए बिनास। सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास।

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिया पूरै तोल कीमत किनै ना पाई है रिदमानक मोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन दारन लग गई यो भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है घट घट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगतना।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतेओ सो अवगुणे आवे जाए, जिस सतगुर पुरख ना भेटेओ सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुरमिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला।

तो काम क्रोतन वसै चंडाल तानक रूप रहा करतार फाही सुरतम लुकी वेश हौ ठगवाड़ा ठगी देश खरा स्याणा बहुत।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कछ करी।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोए। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाना अपना तन मन अगै धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाए।

आपे जग जीवन सुदाता, आपे बख्श मिलाए, जी जानते क्या विचारे, क्या को आख सुनाए, गुरमुख आपे दे वड़ाई, आपे सेव कराए, दे कुटा मोए लोभाणा, चलद्या नाल न जाई, सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई, हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, अंते होए सखाई, अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुरे आप ना जाई, हर जो दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई, श्री राग महला तीजा, तन जननी जिन जाया, तन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया, विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निधान, मेरे मन गुरमुख त्याय हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल होए रहाओ, कर कृपा कर आया, आपे मिले आया, गुर शब्दी सालाही है, रंगे सह सुभाए, सच्चे सच समाया, मिल रहे ना विछड़ जाए, जो कुछ करना सो कर रहे आए, अवर ना करना जाए, चिरी विछुन्ने मेले आनो सत

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए जां आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहणे ते सच्चै दरबार, गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार। गुरमति सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घड़ घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है हमें विचों खोए, सात अन्ना में बाहरी अवगुणवंती रोए, सच सलाही सच लगा सचै नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए, आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुर सलाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिनी सखी कंत पछाणिया।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छट गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। कड़ी मोहत का पाहुना काय सवार नहार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया।

जातो बिनस निदान, जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेणका अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवै भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रव आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवां। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगले पाप त्याग। गुरपुरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थन अंतर आप, जी जंतो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोई। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवां। जिन्ना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजह दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटिया गुरदर्शन देख निहाल, थान थन अंतर रव रहया।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिले पाइये शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम। जन मरण

कर सेवा सुख सागर है, सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ, मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी तिस

दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार। बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार, जो मंगिए सोई पाइए नेदारा आधार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत, एक मन एक ते आइए मन की लहे परात। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात, सदा सदा आराधिए

मन्य पूर राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखण हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया। श्री

पूरा थान थंतर रव रहया प्रमेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिया सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन धारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी

मैं लाड लड़ाया भूले चुकै बारक तू हर पिता माया सोहेला कहन कहावनो तेरा बिखम भावनो रहाओ।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वडियाईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिया मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुरते बाहर किश

तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावे रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सोंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे।

गणत गण आवने आईया सुहावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इओ पिरड़ावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी मैं गुण नाही कोए हर वर नर सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधिए तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दासी सुख होए अवगण त्याग समाइए गुरमत पूरा सोए रहाओ विण राशी वा पारिया तके कुंडा चार मूल न बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार वण जा रहा स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रह सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपावन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नाव पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दाकर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोहना किया करण हार रव सस दीप अनूप ज्योत त्रिपवन ज्योत अपार हाट पटन गढ़ कोठड़ी ससव दावा पार ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखै ठाए ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मिलाए कस कस मट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठौर ना पाए नी खरे खजाने पाए आसा देसा दूर कर इउ मन जाए समाए सुख कहो मांगे सब को दुख ना मांगे कोए सुख है कहो दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास सच रते से जन गए हाँ सतबल हारै जास चहो जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहुणिया मोह काला पत खोए जिनी नाम विसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाणे घर वसै होमै तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग हर जप नाम ते आए तू जम डर पै दुख भाग दुख कणो दोहागणी क्यों थिर रहे सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाओ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਆ ਬਲਜਾਓ ਰਹਾਓ, ਗੁਰਮਤ ਪਤ ਸਾ ਬਾਸ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾਓ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੜੀ ਨਾ ਜੀਵਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਟਿਕਟ ਕੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ, ਚੇਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕਿਆ ਸੁਆਓ, ਆਏ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵਣਾ, ਜਿਉ ਸੁਣੈ ਘਰ ਕਾਓ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀ, ਜਿਉ ਕੱਲਰ ਕੀ ਭੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਚ ਨਾ ਚੀਤ, ਸ਼ਬਦ ਰਪੈ ਘਰ ਪਾਈਐ, ਨਿਰਬਾਣੀ ਪਦ ਨੀਤ, ਹਉ ਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ, ਗੁਰ ਪੁਛਕਾਰ ਕਮਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਜਲ ਜਾਓ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਵੜਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਮਿਲਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਾਮ ਸਲਹਨ ਸਦਾ, ਹਰ ਰਾਖੈ ਉਰਤਾਰ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ

संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाण रव रह ना तिस्काल संताए साहेबा तुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वाह पारी बन जा रहा आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै र जाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस दिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सचत राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुरठा की सच बोल आप तो लाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाई है रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाई सर प्यार मुक्त पदार्थ पाई अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद बेद ब्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफल बिरख हरियावला शाव कनेरी होए लाल

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

होए। पाई रे भगतहीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेवना कीनी वृथा जन्म गवाया। रहाओ आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए। जी जनते क्या विचारे, क्या को वाक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए। देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिसदी कीम ना पाई। प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई। बिन सतगुर को मग न जाणै, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करै दिन राती, हौ मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया। आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै,

सतगुर सेवन से उबरे हर से तिल बिलाए मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूर्व करते लिखिया तिना गुरमत नाम समाए रहाओ विण सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागाओ पाओ सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए जे हर हर कीचै बहुत लुचिया कीर्तना मिटिया जाए हर का पाणा भगती मन्या से भगत पय दर थाए गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिखपल लागै ताए सेजन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का पाणा कमाम दे बिखह मैं तज विकार मन हठ कितै उपाय ना छूटी है सिमरत शास्त्र सोधो जाए मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निधान है जसंत ना पारा वार गुरमुख से ही सोह दे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और ना कोए गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच उगै गुर पाए हर रस पीवै सहज रहै उड़ै न आवै जाए

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आईया मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाईए सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भगत है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर निचल पाईए ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस माए। माया मोह चुकाया गुरमती सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्याप्त है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद

बिन प्रीति भगत ना हो वही, बिन शब्द थाए ना पाए, शब्दे हम मैं मारी है माया का प्रम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत वछल हर मन वसिया, सहज मिलिया प्रभ सोए, नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े, दूजा भाव न जाने, सतगुर भेटे निर्मल होवा, अंधन नाम वखाण है। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर न जाने, खड़ दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पुलाए, सतगुर सेवै ता गत मित पावै, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी से उचित लागे, आवन जान रहाए, पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे, बिन गुर परम पुलाए, लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए, जा ना चेतै ता गत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजै, जा सतगुर मिलै सुभाए, मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए, सतबलिहारी गुर अपने विटाओ, जे हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से ती रंग राता, प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिले वडियाई, गुर कै शब्द पछाता, श्री राग महला तीजा, सहजै नौ सब लोई दी, बिन गुर पाया ना जाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पुलाए, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाए, भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजाए, हर पाया सच सोए रहाओ।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्मो, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्मो, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर, माते दुगणे पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चलै हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल दीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना दे वै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू पो

मात पिता सुत ने हो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कै मन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनै वन जा रहा मित्रा आप कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जा जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगन पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही वन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुणयंत्र नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहया वन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाणिया वन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै वन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा।

संत प्रेम ठगौरी पाए नी जाए गोबिंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुण ना माया होहया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो न तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ न जाय अकथ स्वामी सत कह जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबिन अवर ना कोय जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोय हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जनामिन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हम मैं

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत लगाए वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे देवै ले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई है कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिया हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कौ पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखां दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास। रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतन मोलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर एको करता एक एको दी बाण हर हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखम तार। सलोक महला पहला। दाती साहेब संधिया क्या चलै तिस नाल इक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। सलोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया एक आशाओ आपो जे को पला कहाए। नानक ता पर जापै जा पत लेख पाए। महला दूजा जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना वे आपै जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार सियो तिन पिछे सब जगत छुटी वे। सलोक महला पहला। कुदरत करके वसया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कही ना जाए। सरै सरैयत करे विचार बिन बूझे कैसे पावे पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा
ਗੁਰਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ ਨਾ ਨੇੜੈ ਨਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ ਪੌੜੀ ਸਪਤਦੀਪ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ ਨਵ ਖੰਡ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰ ਸਭਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਵਰਦਾ ਹਰ ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਤੁਜੈ ਧਿਆਵੈ ਜੀ ਜੰਤ ਹਰ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿਨਹਉ ਕੁਰਬਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆ ਵਰਦਾ ਕਰ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਲੋ ਮਸਾਜਨੀ ਕਿਆ ਸਦਾ

दरखड़ियां नाल खसमै रतियां माणै सुख रलियां होंदै तान नितानियां अरह निमाननियां नानक जन्म सकार था जे तन कै संग मिला पौड़ी। तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जल वताएंदा आपे विसे बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुद्दों बाहर किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जान।

राजियो रेण संतन की मेरे मुख लागी दुरमत बिन सीक बोध्या पागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से कूरा जियो माज महला पंजवा विसर नाही ए वड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यो तुध ते आई एहो दान मोहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सबके दिया पलिया जाई आनंद बिनोद तोज तमासे तुद पावै सो होना जियो जिसदा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज के रंग करना जियो सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही सा मत दीजै जितो ते आई सास सास तेरे गुण गावां ओट नानक गुर चरणा जियो माज महला पंजवा सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई सोई जप जो प्रभ जियो भावै भाणै पूर ज्ञाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावै जो साहिब तेरे मन भावै तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो तू संतन की करै प्रतपाला संत खेलै तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन भाने तिन कै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त।

रे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मान लीना जियो। ज्यो बारक पीखी रिया गावै ज्यो निर तन तन दे सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग एहो मन पीना जियो। ज्यो अंधार है दीपक प्रगासा परता चितवत पूर्ण आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु साई दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडार नहरिया अवर साध चक सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै नाम निदान तसे प्राप्त जे शब्द गुरु मन मूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्तिया गाना जिन हर साध पाया सो नाहीं डोलाना तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस सबत जिस मस्तक पा बीठा जियो। हर एक साथ आया वरसाने बहुते रे तिस लग मुक्त पए कन्हेरे नाम निदाना गुरमुख पाईऐ कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरा जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशिया रंग रावै जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पए पुनीता सगलो दारे पाई मीता आगमा गोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जा को खोजै सर्व्यो पाए वडभागी दर्शन को विरला पाए ऊचा पारा गोचर थाना ओ मैल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त भया जिस दै वसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जा नानक सहि समाई जियो। माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याई सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया किलब काटे निर्मल थिया अंध भया निकसी सब पीरा सगल बिनासे दरदा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे कौ डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए गुर भेट तह गई बिलाए सा सा सर गावै नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संगराता प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकर ही काया हर जियो। काट सिरक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकर सब जानै ठाकर के सेवक हर रंग मानै जो किछ ठाकर का सो सेवक का सेवक ठाकर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकर जो पहराया बहुर ना लेखा पुछ बुलाया ते सेवक है नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो। माज महला पंजवा सब किश घर मैं बाहर नाही बाहर टोलै सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो। चिम चिम वरसै अमृत धारा मन पीवै सुन शब्द बिचारा आनंद बिनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया सुमत पाए नाम ते आए गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यों जलै समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया
कहो नानक परम कटे केवाड़ा, बहु न होइए जौला जियो। माज महला पंजवा, तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना भणिया। वार वार जाई तिस विटाओ, जो मन तन तो द्यारा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चल, नैन निहाली तिस पुरख दयाल। मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुरमिल सो प्रभ ला दे जियो। सेवड़ भागी जिन तुम जाने, सब कै मद्दे अलिप्त निर्वाणे। साध कै संग उन पौ जल तरिया, सगल दूत उन साधे जियो। तिन की शरण भरिया मन मेरा, मान तान तज मोह अंधेरा। नाम दान दीजे नानक कहो, तिस प्रभ अगम आगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होवा असूली। तू जल निद तू फेन बुद बुदा, तुद बिन अवर ना पालिए जियो। तू सूत मणिए पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है। आद मद अंत प्रभ सोई, अवरना कोय दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्वाण रसिया रंग राता। अपने कर्तव्य आपे जाने, आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पूरी नजर निहालिए जियो। माज महला पंजवा, सफल सो बाणी जित नाम वखाणी। गुर प्रसाद किने विर लै जानी, तन सो वेला जित हर गावत सुनना। आए ते परवाना जियो, से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा। से कर भले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले। हम बलतन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उधारे। किल विख काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दोए कर जोड़िक बिनो करी जय, कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै। नानक कौ प्रभ पै कृपाला, प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवै परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पाया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना। जल थल नीर भरे सर सुबर, बिरथा कोई ना जाए जियो। दया तारी तिन सृजन हारे, जी जंत सगले प्रतपारे। मेहरवान किरपाल दयाला, सगले तृप्त गाए जियो। वन तृण त्रिपवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया। गुरमुख नानक तसै अराधे, मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सब नी थाई, ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा। तुझ बिन दूजा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो देव पाए, जिजत पाना तित तलाए। सब किश कीता तेरा होवै, नाही किश असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया। गुर पूरे वजी वाधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण प्रमने अधारा। भगत जीवै गुण गाए अपारा,
गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन मरण मिटावे, आस मनोरथ पूर्ण होवे, भेटत गुरदर साया जियो, आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी, साधक सिद्ध ते आवे ज्ञानी, खुदी मिट्टी चूका पोलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी अपना, ना ओ नानक कर मैं आया जियो, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकर अत भारी, तुमरे करतब तुम ही जाना हो, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मन सगली खोवे, पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो, प्रभ अपना सास सास सुमारो, एह मत गुर प्रसाद मन धारो, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो, सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई, चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पय निहाला जियो, माज महला पंजवा, हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल सांस सह सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो, सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जियो, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस दाते आई, जन्म मरण पै काटे मोहा, बिनसे सोख संतापे जियो, सास सास नानक साला हे, सिमरत नाम काटे सफा हे, पूर्ण आस करी खन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो, माज महला पंजवा, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावे गुण अगम्या पारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याईये जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के किल बिख जावे, मन चिंदे से ही फल पावे, सिमर साहेब सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो, नाम जपत सर्ब सुख पाईए, सब पौ बिनसै हर हर त्याईए, जिन सेव्या सो पार ग्रामी, कार्ज सगले थिए जियो।

माज महला पंजवा सबे सुख पय प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाण जियो प्रा मृणै की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाण जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध स्याणप किशु ना जापे अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुरबानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपुर देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

माया मोहे जोहया जम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावणिया, गुरमुख भगत जाय आप कराए तन मन राता सही सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख वण जे सदा वापारी लाहा नाम सद पावने आ। आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वण जै के ई के। नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने आ। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण मैं आप समावने आ। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने आ। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावने आ। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले देश जाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावणिया। पेयड़ प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावणे आ। पेयड़ पर मन वसाया पूरे गुरह दूर दिखाया। कामन पर राख्या कंठ लाए शब्दे पर रावै से सुहावणे आ। आपे देवै सद बुलाए अपना नाम मन वसाए। नानक नाम मिलै वडियाई अंदन सदा गुण गावणे आ। माज महला तीजा ऊतम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवै कर माहे उदासा। हर रंग रहै सदा रंग राते हर रस मंत्र बतावणे आ। हाँ वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावने आ। गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चै सोभा पावने आ। रहाओ अलाख्या पेओ हर रया समाए उपाय न किती पाया जाए। कृपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मिलावने आ। दूजे पाए पड़े नहीं बूजे त्रिबद माया कारण लूजे। त्रिबद बंधन टूटे गुरसबदी गुरसबदी मुक्त करावणिया। एहो मन चंचल

हाँ हाँ करे तय आप जनाए, बहु कर्म करे एक स्थाए न पाए। तो इते बाहर किशु ना होवे, बक्से शब्द सुहावणिया। उपजे पचे हर बुझे नाही, अंदन दूजे पाए फिराही। मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावणिया। पिर पर दे सिंगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। हलत ना सोभा पलत ना ढोई, बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरलै जाता, पूरे गुर कै सब

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवे ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरह सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाक ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निहकर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता।

अंध कूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवणिया।

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास। दोया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथै जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास। जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। वन तिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार। जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागणी।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतरवास रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन ने माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुर दीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

पुकारिता उड़िया हंस दसायरा आया गया मोया ना पिछे पतल सद्यो का नानक मन मुख अंध प्यार वाजगुरु डुबा संसार महला पहला दस बाल तन भी श्रवण तीसा का सुंदर कहावे चालीसी पर होए पचासी पग खिसै सठी के बोढ़े पाया वै सत्र का मत ही।

डिठ मैं नानक जगत हुए का तवलहार पौड़ी तू करता पुरख्या गम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खिजाए उठ बिन्ना में मर जाती गुरमुख रंग चिलू लिया रंग हर रंग राती सो से वो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती तू आपे आप सुजान है वट पुरख बढ़ाती जो मन चेत तुद त्याय दे मेरे सच्चिया बल बल हों तन जाती श्लोक महला पहला जियो।

तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा अख बखानी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजानी है पौड़ी। तुदे आपे जगत पाए कै तुदे आपे तंद लाया मोठ गौली पाए कै तुदे आपो जगत खुआया। तिसना अंदर अगन है न तिपतै भुखा तिहाया सहसा संसार है मर जमै आया जाया। बिर सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना तन जने दी माया सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया। श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना पैरां बाजो चलना मेर हथा करना जीबै बाजो बोरना यो जीवत मरना नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। महला दूजा दिसै सुनिए जानिए सौ न पाया जाए रोहला टुंडा अंदला क्यों गल लगे तहाए पह के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे नानक है सियाणीए इव कंत मिलावा होए पौड़ी। सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया हम मैं गुरु ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया। ज्यो पावै त्यो रख तू सब करे तेरा कराया एक ना बख्सै मेल लै गुरमती तुदै लाया। एक खड़े करै तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया। पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया ओहे अंदरो बारो निर्मले सच्चै नाय समाया। श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आलो कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार। पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार। होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना होवा नानक शब्द विचार। महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तोवै। अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने हम वे दुख काले। नानक गुरमुख हमै टुटै ता हर हर नाम ते आवै नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै। पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया सुख उठे रोग पाप कमाया। हर खो सोग विजोग उपाय पाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए मुठाया मुहाए साथ है नानक ऐसा गूजा पै। महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नामुक सच्चा लाए ओ हरे मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होए ता मल है छपड़ ना तै सगवी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदन हर हर नाम ते आए। ओ आप छुट्टा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब सिरिट छिड़ाए जन नानक तिस बारे हारण जो आप जपै अवरा नाम जपाए। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे वण खंड वासा एक भगवा वेश कर फिरै जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत शादर भोजन की आसा वृथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा। जम काल सिरो न उतरै त्रिवद मनसा गुरमती काल न आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा। सच्चा शब्द सच मन कर ही माह उदासा नानक सतगुर सेवन अपना सियासा ते निरासा। श्लोक महला पहला जे रत लगै कपड़ै जमा होए पलीत जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। नानक नाम खुदाए का दिल हच्छै मुख ले हो अवर दिवाजे दुनि के झूठे अमल करे हो। महला पहला जा हो नाही ता क्या खा क्यों नाही क्या होवा कीता करना कहया कथना भरिया पर तोवा। आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा या गूहोवा नानक कहंदा होए कै दसे राह है
ਸਭ ਸਮੁਹਾਏ ਸਾਥ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਹੇ ਸੋ ਐਸਾ ਅਗੂਜਾ ਪੈ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਕੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੱਚੇ ਲਖਿਆ ਪਾਰਾ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜੀਐ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਤਨ ਖਟਿਆ ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰਾ ਜਿਸਦਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਗੱਲੀ ਪਿਸ ਨਾ ਜਾਈਐ ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਮਰ

बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह सियाणप पवे ना ताओ। नानक मनमुख बोलन वाओ, अंधा अखर वाओ दवाओ। गौड़ी महला पहला, डर घर घर डर, डर डर जाए। सो डर कहा जित डर डर पाए, तो बिन दूजी नाहीं जाए। जो कुछ वरतै सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर। रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किश किया सो किश करे। हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हित आसा असमान, तिस विच भूख बहुत नैसान। पौ खाना पीना आधार, बिन खादे मर होए गवार। जिसका कोए कोई कोए कोए, सब को तेरा तू सबना का सोए। जाके जी जंत धन माल, नानक आखण बिखम विचार। गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख। सत भाई करे हो विसेख, कहना है किश कहन ना जाए। तो कुदरत कीमत नहीं पाए। रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे, करनी कामण कर मन लए। साहा संजोग वियाह वियोग, सच संतत

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है भीतर होंदी वस्त न जाण है हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर।

गुरमत दे भरोसा तेरा, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड़ियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना, रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवार सांझ बयाल, इत उत मनमुख बांधे काल, अहनिस

तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुत जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कह हृदय वसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता,

नानक से देह आवन। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिला वै सोई। मेरा प्रभु सब विद्यापे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाने। सतगुर कै भय प्रम पौ जाए पै राचे सच रंग समाए। रहाओ गुर मिले हर मन वसै सुभाए। मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए शब्द सलाह अंत ना पारा वार। मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसै सच सोए। साच वसै साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार। गुरते

ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हाँ मैं विच गावै बिरथा जाए, गावन गावै जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रह जे सतगुर पावै। मंतन राता नाम सुहावै रहाओ। एक गावै एक भगत करे, नाम ना पावै बिन असनेह। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा उरतार। भगत करै मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाणै, नानक बख्शे नाम पछाणै। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए। बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरै दारू जाणै कोए। मन शब्द मरै बूझै जन सोए। जिसनो बख्शे दे वडियाई, गुरप्रसाद हर वसै मन आई रहाओ। गुरम करनी कार कमावै, ता इस मन की सोझी पावै। मन मैं मत मैंगल मिकदारा, गुर अंक समार जीवाल नहारा। मन या साध साधै जन कोए, अचर चरै ता निर्मल होए। गुरमुखे हो मन लिया सवार, हम मैं विचों तजे विकार। जो तुर राखिया नु मेल मिलाए, कदे न विछड़ै शब्द समाए। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, हम मैं विच सब जग बौराना। दूजे पाए परम पुलाना, बहु चिंता चितवै आप ना पछाना। तंदा करत्या अंधन विहाना, हिरदय राम रमो मेरे पाई। गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता, जग जीवन सेव जग चारे जाता। हाँ मैं मार गुर शब्द पछाता, कृपा करे प्रभ कर्म विधाता। सेजन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए, तावत वर जे ठाक रहाए। नाम नामृत गुरते पाए, हर कृपा ते हर वसै मन आए। आराम राम करत्या सुख सांस शरीर, अंतर वसै ना लागे जम पीर। आपे साहेब आप वजीर, नानक सेव सदा हर गुणी गहीर। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सो क्यों विसरै जिसके जी पुराना। सो क्यों विसरै समय समाना, जित सेवै दरगै पथ परवाना। हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरै तद ही मर जाओ रहाओ। तिन तू विसरै जे तुद आप भुलाए, तिन तू विसरै जे दूजे पाए। मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाए। जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए, गुरमती हर नाम समाए। जिन्ना पोतै पुन से ज्ञान बिचारी, जिन्ना पोतै पुन तिन हम मैं मारी। नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, तू अकथ

जय सतगुर तै सतसंगत बनाई, जय सतगुर सहजे हर गुण गाई। जय सतगुर तहां हो मैं शब्द जलाई, गुरमुख सेवा महली थाओ पाए। गुरमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरमुख भगत हर नाम समाए। आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार। नानक नाम रते तन कौ जयकार, गौड़ी गुआरेरी महला तीजा। एक स्ते सब रूप है रंगा, पौन पानी बैसंतर सब सैलंगा। पिन पिन वेख्या हर

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचो भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट न होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरुष संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करै आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उजल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै। गौड़ी गुआरे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखै विकसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे। हर आपे सारंग अमृत धारा, हर अमृत आप ही आवनहारा, हर आप करे आपे निस्तारा। हर आपे बेड़ी तुलहा तारा, हर आपे गुरमति निस्तारा, हर आपे नानक पावै पारा। गौड़ी बैरागण महला चौथा, साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यो जे आप दयाल होए दे। हमन जारे राम के हर वणज करावै, दे रास रे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिहै वणज हर लाया।

ज्यो जन्नी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए तन खाड़ दे कर भोग बिलासा, त्यों हर जन प्रीत हर राखदा, दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गोसैया। जानकी उपमा तुझै वडैया रहाओ, मंदिर घर आनंद हर, हर जस मन पावै सब रस मीठे मुख लगै, जा हर गुण गावै हर जन परिवार सधार है, एकी कुली सब जगत छुडावै, जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई, हर जी तेरे तू मरतदा हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाईदा आपे वरताई, लाला हट विहाजिया क्या ते चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई, जन नानक हर का दास है हर की वड्याई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा, किरसाणी किरसान करे लोचे जियो लाए, हल जोते उद्यम करे मेरा पुत धी खाए, त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिडाए, मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम, गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ, लै तुरे सौदागरी सौदागर तावै, तन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै, त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै, बिकसन चै हटवाणिया बै हट कमाए, मो झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए, एहो माया मोह कुटुंब है पाए दूजै फास, गुरमति

हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर भावे। हम अपराधी राखे गुरसंगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब बिस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे।

था हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिलया आप गवाया हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया राम गुर के बचन हर पाया रहाओ मेरे हियर प्रीत नाम राय की गुरमार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुरे आगे जिन विछड़िया हर गल आया मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहजानंद भया मन मोरे गुरे आगे आप विचाया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजा सबदा नहद गुरमत मनुआ गावे वडभागी गुर दर्शन पाया तन धन गुरु लिवलावै गुरमुख हर लिवलावै रहाओ हमरा ठाकर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावै हम मलमल तोवै पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावै हृदय गुरमत राम रसायण जेवा हर गुण गावै मन रसक रसक हर रस आगाने फिर बहुर ना पूख लगावै कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम ना पावै जन नानक कहो हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रमा संतोख पिता कर गुरपुरख्या जन्मा वडभागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग भिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियाड़े तुरकर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करीहा जियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठ टोल टोल मिलिया जियो मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो हर विटड़ियो सदा कोले जियो वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जियो मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपूरा वेख विगस जियो हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा मन अनदिन अनदर हस जियो हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जियो हर आपो पाए हर आपे वेख हर आपे कर लाया जियो एक खावे बख्स तोट ना आवे एक ना फुका पाया जियो एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना पिख मंगाया जियो सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपूरा लख लखाही जियो हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दाल दो दुख लह जाही जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही जियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किन हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो
ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਬਾਜੋ ਤਨਕੁਮ ਲੈਣੀ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਿਹਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਓ, ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਬਿਰੋ ਹਰ ਲਾਈਆ ਜੀਓ, ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀਵਾਈਆ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਨ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜੀਓ, ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿਟੜਿਓ ਸਦਵਾਰੀ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹਿ ਬਾਰੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਨੋ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਸੁਜਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਓ, ਆਪੇ ਜਗਤੋਂ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪ ਖੇਲੈ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਗਰ

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जब मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी, रैन दिनस रहे करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गवन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते। सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिसे सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का हुए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना। आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात तू

उदरा यात्रा संसार, राम नाम जप एक ओंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाकै माथा एहो निदान, सोई पुरख जपै भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हौ तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, चौपदे दुपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जो प्रायो सोई अपना, जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना। कहो गुसाई मिलिया के है, जो बिबर्जित तिस्यो ने है। रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ा पूठा बुनना। दुहा सरिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, कल युग में मिले आए संजोग। जिचर आ गया तिचर पोगे भोग, जले ना पाइए राम स्नेही। किरत संजोग सती उठ होई। रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइए, प्रे संग ना पावे बहुजोन पवाइए। सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी को दुख ना जमाने। कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जाने, तन सती दरगह परवाने। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, हाव तन मन तो पाग सच नाए। हर गुण गावे सही सुभाए। रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। अर्तन लाल जाका कछु ना मोल, परे भंडारा खूटा तोल। खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वध दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए। गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिए दूर। डर चुका देखिया भरपूर।

हमारा अंतर्यामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी, हम दास तुम ठाकर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा, जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही का लंगा। माधो जा को है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जा कै हृदय ठाकर होए, ताको सहसा नाही कोए। जा को तुम दीनी प्रभ धीर, ताकै निकटण आवे पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा, दुलब देह पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्म घाती। मर न जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम। रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिदमहे समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीक झूठे सब साक। काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुक्म तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहां कौन रोत। मेरा मेरा कर बिल्ला ही, मरण हारे जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट। गौड़ी महला पंजवा, वड़े वड़े जोधी सह लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड़ा माया वड़ियाई, सो वड़ा जिन राम लिवलाई। रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक्यो तत विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा।

पूरा सुख पूरा संतोष पूरा तप पूर्ण राजयोग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सदवसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिट अग कोट संत प्रसाद जन मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत कै संग मिटिया हंकार दृष्टिया वै सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वसपंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमत त्रा सबनास है सा मत पूरी जित हर गुण गावै वड्डे पाक साधु संग पावै रहाओ साध संग पाईए निदनामा सा संग पूर्ण सब कामा हर की भगत जन्म प्रवान गुर कृपा ते नाम वखान कहो नानक सो जन प्रवान जा कर दैवसै भगवान। गौड़ी महला पंजवा एक सस्यों जाका मन राता विसरित सह पराई ताता बिन गोबिंदना दी सह कोई करन करावन करता सोई रहाओ मन कमावै मुख हर हर बोलै सो जन एतुत कतै ना डोलै जा कै हर तन सो सच साहो गुरपुरै कर दीनो विसाहो जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया। गौड़ी महला पंजवा नाम भगत कै प्राण आधार नामो तन नामो व्यवहार नाम वडाई जन सोभा पाए कर कृपा जिसे आप देवाए रहाओ नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन कौ धार है सा सा जन नाम सुमार है कहो नानक जिस पूरा भाग नाम संगता का मन लाग। गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम ते आया तब ते तावत मंत्र बताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हती बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता साबता जन नाथ एक शरण आयो ऊंचा स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हर नानक मन बसिया। गौड़ी महला पंजवा कर कर टहलो रसना गुण गावो चरण ठाकर कै मार्ग तावो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का दर्शन पेख प्रभव नासी मन मै लेख सुन कीर्तन साध पै जाए जन्म मरण की त्रास मिटाए चरण कमल ठाकर वरताल दुलभ देह नानक निस्तार। गौड़ी महला पंजवा जाको अपनी कृपा धार है सो जन रसना नाम उचार है हर बिसर तो सहसा दुख व्यापै सिमरत नाम परम पौ भागै रहाओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावै तिस जन दुख निकट नहीं आवै हर की टहल करत जन सोहै ता कौ माया अगन नाम पोहै मन तन मुखर नाम दयाल नानक तजियले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवा छाड़ सियाण बौचतराई गुरपुरे की टेक टकाई दुख बिन से सुखार गुण गाए गुरपुरा पेटिया लबलाए रहाओ हर का नाम दियो गुरमंत्र मिटे वसूरे उतरी चिंत अंध भय गुर मिलत कृपाल कर कृपा काटे जमजाल कहो नानक गुरपुरा पाया ताते बहुर ना व्यापै माया। गौड़ी महला पंजवा राख लिया गुरपुरै आप मन मुको लागो संताप गुरु गुरु जा मीत हमारे मुख उजल हो वै दरबारे रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए दुख दुश्मन तेरी हतै बलाए गुर का शब्द तेरा संग सहाई दयाल पाए सगले जी भाई गुरपुरै जब कृपा करी पंत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवा अनक रसा खाए जैसे ढोर मुख की चेवरी बांध्यो चोर मृतक देह सा संग बिहुना आव जात जोनी दोखी ना रहाओ
ਅਨਕ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਹਿ ਡਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵਤ ਸਭ ਕਾਮ, ਨੇਫਲ ਮਾਨਖ ਜਪੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕਹੋ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਭਜੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ।

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात,

सह सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवां, भले दिनस

पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटाके अंतरजामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम बिहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम बिहून त्रिगदेह बेगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून कहां सोहाग नाम बिसार लगे अनसवाए ताकि आसना पूजै काए कर किरपा प्रभ अपनी दात नानक नाम जपै दिन रात गौड़ी महला पंजवा तू समर्थ तू है मेरा स्वामी सब किस तुम ते तू अंतरजामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उदरै जन कोट रहाओ जेते जी ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूख नेरे जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा कर कृपा दीजै प्रभदान नानक सिमरै नाम निधान गौड़ी महला पंजवां ताका दर्श पाईऐ वडभागी जा की राम नाम लिव लागी जा कै हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ सर्व निधान राखे जन माहे ताकै संग किलविख दुख जाए जन की महिमा कथी न जाए पार ब्रह्म जन रया समाए कर किरपा प्रभ बिनो सुनिजै दास की तूर नानक कहो दीजै गौड़ी महला पंजवां हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए पज मन मेरे को नाम जी तेरे कै आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जा कौन दर करे गौड़ी महला पंजवां हिरदय चरण

हर सिमरत पूर्ण पद पाया, सा संग पै परम मिटाया, जत कत देखो तत रहया सुमाए, नानक दास हर

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन

सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत संभट कलेश। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा। जब जब जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए। साध कै संग किलबिख सब धोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए। तिस्यो आलस क्यों बने माए, खसम बिसार आन कम लागे। कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा। दास सलाम करत कत सोभा, अमृत रस खावे खान पान। जिन दिए तसै न जाने सुवान,

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ। शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तान्यो मस्तक।

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवां, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाई है,

खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपे पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत और दो तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ से मन माने। आगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक को प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरुदेव बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे आराध मेरा मन धीरा। रहाओ

नानक मांगत नाम आधारे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल कृपाल प्रभ नानको, सा संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिलै वड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछे वैरागी, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे। भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटनहार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा,

करो दास दासन की अनक पांतिस करो नेहोरा। तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्स सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पढ़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। एक बसबिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यो पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन विद मिलै गुसाई सहज पया प्रमखिन मैं नाठा। मिल ज्योति जो समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ लै सतगुर मजै बतायो रहाओ। जात का देखो ताता तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो। कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो। होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निध नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठे जायो। एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो। कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्त तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सुरै नारे मन गुरमल का इसवारे। रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला। इहां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियाए हर रस अकथ कथा तिन जानी। झांको आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे। नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण।

खेद करे यार बहुत संताव आयो शरण तुहारे कर कर हार्यो अनक बहु पांती छोड़े कथू नाही एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते तीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा बेखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अवनासी राया निरपव संग तुम्हारे बसते एह डरन कहां ते आया रहाओ एक महल तू हुए हफारो एक महल निमानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित भगता एक महल खल होता एक महल तू सब किश ग्राहज एक महल कशु ना लेता काठ की पुत्री कहां करे बपरी खिलावन हारो जाने जैसा पिख करावे बाजीगर ओ तैसो ही साजियान अनक कोठरी बहुत पात करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे विचारा जिन किश किया सोई जाने जिन ए सब बिसाजी कहो नानक परंपर स्वामी कीमत अपने काजी गौड़ी महला पंजवा छोड़ छोड़ रे बिख्या के रसुआ उर्ज रहे ओरे बावर गावर जो किरखे हरे आयो पसुआ रहाओ जो जाने तू अपने का जय सो संग ना चाले तेरे तसुआ ना गोवायो ना सिदासी फेर फिर वार काल ग्रसुआ पेख पेख रे कसुंभ की लीला राच माच तिनहू लव हसुआ शीजत डोर दिन सर रैनी जी को काज न कीनो कछुआ करत करत इवि बिरधानो हार्यो उगते तनखी नसुआ जो मोयो उन मोनी बाला उसते कटे नाही रुचसुआ जग ऐसा मोय गुरै दिखायो तव शरण पर्यो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ

बोले वर्ण ना साकाओ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते भ्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हम मारी जन्म मरण कहो चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा यवरना किन्हीं कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शनो साध संगत कै पाछ कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछै

बंते छूटै सर्व सुखा सुख पाई है, सेव स्वामी सदगुर दाता मन बंछत फल आई है। नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारै चालै, कर सेवा सदगुर अपने की गुरते पाई पालै। गुर किरपाल किरपा प्रभ धारी बिनसे सर्व अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे लाख तरोरे मन ना हो रे, परे परे ही कौलुजी है। सुंदर नारी अनक प्रकारी पर ग्रह बेकारी, बुरा पला नहीं सुजी है। अनक बंधन माया परमत परमाया, गुंडित नहीं गाया मन बिखै ही मैं लुजी है। जा कौरे कृपा करे जीवत सोई मरे, साध संग माया तरे नानक सो जन दा।

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो, सहज केलो अनद खेलो, रहे फेर पय मेल, नानक गुर शब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ, सेवत सेवत सदा सेव, तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साध की हो काटिए जमजाल, होम जग तीर्थ किए बिचहु मैं बदे बिकार, नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार, शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे, जैसो गुर उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार, राग गौड़ी माला महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ, जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ, तौ लो दुखन परे, जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप करम हों किए, ते बंद परे, जौ साधु कर मस्तक धरयो, तब हम मुक्त पए, जौ लो मेरो मेरो करतो, तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो, तब हम सहज सोए।

मान अपमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाक रह लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टा गयो निरपव पय संत भ्रम डार्यो पूर्ण सरबाग्यो जो किश करता है कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कह सोयो मन जाग्यो जल नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुर पूरै धरयो मन जीतो जग सारी त्रिपत्या गाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चुके अखुट खजाना सतगुर दिया टुट नहीं रे मुके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे पर्दा ठाकर जाओ भेटियो तो बिसरी तात पर आई कहो ना जाई एहो अचंभो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पय बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्वलोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सात सिमरत वेद बिचारे महापुरख ने ओ कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख न किन्हू लहया तीन पवन की लक्ष्मी जोरी बुझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण होत ना कामा जल तो कबहू ना बुझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन मरण निवार नानक जन की तूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको हिबद को समझावै करता होए जनावै रहाओ अनजानत किश इन्हें कमानो जब तब कछु ना सादा दह दिस लैयो मन दौरायो कवन कर्म कर बादा मन तन तन भूम का ठाकर हाँ इसका एहो मेरा परम मोह कै सूझ सुनाही एह पैखर पै बैरा तब एहो कहां कमावन परया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन रंकार प्रभु सब कुछ आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिने हो रचन रचाया कहो नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाने एह और मूसे रहाओ बरत नेम संयम में रहता तिनका आड ना पाया आगे चरण और है भाई ऊहा काम न आया तीर्थ नाए।

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवां मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान रहाओ। जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध। ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। भय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप। तत्ती वाओ ना लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दै गुर, गुर सच्चा सृजनहार। गुर तुठै सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा। जप पूर्ण होए कामा रहाओ। राम गोबिंद जपिंदिया, होवा मुख पवित्र। हर जस सुनिए जिसते, सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे। क्यों गोबिंद मनो विसारी, जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे है जीविए, भव जल पइए पार। मिल साधु संग उधार होए, मुखी उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस, संत जना की रास। नानक उबरे नाम जप, दर सच्चे साबास। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू। तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरतियां मिलिया निथावें थाओ रहाओ। होर साध सब फिकिया, तन मन फिका होए। विण परमेसर जो करे, फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साधका, तरना एहो संसार। पार ब्रह्म आराधी है, उदरै सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे। अवगुण सब मिटाए कै, पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर, हर के चरण निदान। नानक जाचक दा

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक हो खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनस एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो न जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यों सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यों बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनिस मगन रह माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद्या बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग, देखता से उठतावै। भुगत मुगत का कारण स्वामी, मूड ताहे बिसरावै, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा, साधो एहो मन गहयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध कट ही के पीतर, जेह सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सब को हिरलीना, तासो कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तो सब बिद बने।

पत तपुनीतो दीन बंद हर शरण काहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन करो निमखना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बानो ता सो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु ता सो नेहो ना लावै, नानक मुक्ताहे तुम मानो जे कट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो एह बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटे नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ता को नाम ही है मो धर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कशु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी, एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निध सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छुट्टी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवै मन हास्यों ला गया रस संग्रह बिख पर हर त्या गया। पाए बसे जमका पौ भाग्या साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम भुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान।
चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन मन गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बहुचतै विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्धो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर

तृष्णा यगनो शब्द बुझाए, दूजा परम सहि सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो।

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरणगत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरप होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नह केवल निरपौ नाउ, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचै शब्द उदर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख भेवा, जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अनपूजा, संत हेत प्रवतर पवन धारे, आत्म चीने सो तत् बिचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ता के दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवै, बिन गुर अंत ना पाए अपेवै, आप लाए आपे मत देवै, दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा धारी, भूलो रावण मुगदिया चेत, लूकी लंका लूटी लंका सी समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मद कीट मैं खासा, हरनाक्षले नखो बिदासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमन संघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दैत संघार संत निस्तारे, आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दै संघारे, गुरमुख साच भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जानिया करता सोई, जन को दुख पचै दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावै परम भुलानिया, एक तिल भूले बहुर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीस ना राखै कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए, नानक नाम मिलै गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहराओ

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड सिंगार कर अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी।

सिद्ध कहावाओ रिद्ध सिद्ध बुलावाओ ताज कुलै सिर छतर बनावाओ बिन जगदीश कहां सच पावाओ खान मलूक कहावाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा हों मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान सियावरे परपंच ब्याह त्या गै कवरे भाई मिलै सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत यगन जगत पर जार है सो उबरै गुर शब्द विचार है प्रेंग पतंग कुंचरिया रमीना मिर्ग मरै सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बीना काम चितै कामण हितकारी क्रोध विनाशै सगल विकारी पत मत खोवै नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वसेई बिन पिर तृप्त ना कबहू होई पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना लेखे पावे वेश करे बहु पसम लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर

सुनावै तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावै वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो गुरसबदी मथे अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हाउ मैं करत पेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत विरले मन मानिया हाँ हाउ करत नहीं सच पाई है हाउ मैं जाए परम

सुल्तान खान बादशाह नैरना नामो पूले जमका दुख सहना मैं तर नाम ज्यो राखो रहना चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सह मरे संचय माया दाम मैं तन दीजे हरे अमृत नाम रैयत मेहर मुकदम सिकदार है निश्चल कोय ना दिसे संसार है अफरियो काल कूड़ सिर मार है निश्चल एक सच्चा सज सोई जिनकर साजी तने सब गोई ओ गुरमुख जापै ता पत होई काजी शेख पेख फकीरा वड्डे कहावै हम मैं तन पीरा काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा

आए नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल ना जो है, मनमुख कहो आवत जावत दुख मोह है। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है। निज कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते सुख कही है। गुरमत चालो निचल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले। पीवे अमृत तत् विरोले, सतगुर दीखिया दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चूकी अहम ब्रह्मणी। इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया। निचल महल नहीं छाया माया, सासन दुखे परम चुकाया। जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला। राम नाम

आवै सदही निर्मल सही सुमावै। हर कथा सुनै से तनवंत दिसै जुग माही तिनको सब निवै अंदर पूज कराही। सहजे गुण रवै साचे मन माही पूरा सतगुर शब्द सुनाया त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया नानक हमें मार ब्रह्म मिलाया। गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाणै अंतर तामस आप ना पछाणै तां प्रभ पाए गुर शब्द बखाणै। गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ। गुरमुख प्राणी अपराधी सी दे गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे। मेरा प्रपाया गुर कै शब्द सी दे सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए। मेरे प्रभ साचे कै मन पाए हर गुण गावै सह सुभाए। बिन गुर साचे परम पलाए मनमुख अंधे सदा बिख खाए। जम डंड सह सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई। हम मैं मार सच लिवलाई सदा रह हर नाम लिवलाई। सतगुर सेवै से जन निर्मल पवित्ता मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता। इन विद कुशल तेरा मेरे मीता सतगुरु सेवे सो फल पाए। हृदय नाम विचों आप गवाए अनहद बाणी शब्द बजाए। सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई भगती सीधे दर शोभा पाई नानक राम नाम वड्याई। गौड़ी महला तीजा त्रै गुण वखाणै भरम ना जाए बंधन ना टूटै मुक्त ना पाए। मुक्त दाता सतगुर जुग माहे गुरमुख प्राणी परम गवाए। सहित उपजै।

तिसकी सरकार ओ क्यों मनो विसारी है, हर रखिए हृदय तार। नाम मिले है पत पाई है, नाम मने है सुख होए, सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए। सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टिकानो, तरत असमान ना चले विच विष्टा पे पचानो। एहो जग परम पुलाया मूठ गौली पाए, जिन्ना सतगुर पेटिया तिन नेण ना पिटे माए। सतगुर सेवन से सोहने हाँ मैं मैल गवाए, सबद रते से निर्मले चल सतगुर पाए। हर प्रभ दाता एक तू, तू आपे बख्श मिलाए, जन नानक शरणागति ज्यो पावै तवै छड़ाए। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हरे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर हले मन परदेसिया क्यों मिलिए हर माए, गुरपाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए। मन कर हला सतगुर।

मन करहला अत निर्मला मल लागी हम आए परतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हरदय पाल पाल आए ओ पाए कितना लबई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए घर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगह पहनाया हर आब लया गल

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अन काज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सतबलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो, हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो, घर बैठिया हर पाए घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जमे नामो मन वसाए, नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिराजियो, जां चाख है चित लाए, रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जां हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम ते आए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए। नामे उपजे नामे बिरसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमती पाईऐ आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिराजियो, तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किने सुख ना पायो पिराजियो, बिख्या लोभ लुभाए बिख्या लोभ लुभाए, परम पुलाए ओह क्यों कर सुख पाए। चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप विच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूकै जां गुर शब्दी चित लाए। मन मुख मुक्त गवार पिराजियो, शब्द मन नाम वसाए। माया का परम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए, बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए, जिसनो हर जियो करे।

शांत। जप मना तू राम नारायण गोविंदा हरमादो, ध्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो। दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है, जम पंथ विखड़ा अग्न सागर निमख सिमरत साधी है। कल मलै देता शुद्ध करता दिन सरहण आराधो, बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो। सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया। भगत वछल पुरख पूर्ण मनिया चिंदिया पाईऐ, तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया, बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी, करना मैं समरथ स्वामी घटघट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम्या पारो, सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो। रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी, बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला, विश्वंपर देवन को एक है सर्व करै प्रतपाला। प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किसै, काल कंटक लोभ मोह नासै जी जा कै प्रभसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला, बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जब दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मल उदम करे हा, मनाए लय हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत। सखी वस आया फिर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत। नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत। सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाई है, सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाई है। कल कलेश मिटै भ्रमनासै मन चिन्हया फल पाई है, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए। खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड़ पागी माए। सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया। सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया। ब्रह्म खोयो सांत सह स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया। वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपै सुनो आपै सुख आसन आपै सुनत आप ही जासन आपने आप आपै उपायो आपै बाप आप ही मायो आपै सूखम आपै अस्थूला लखी ना जाई नानक लीला।

आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओवं गुरमुखियो अकारा एक सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल पांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा सलोक सेई साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सौ सतपुरख ते पिन ना को सौ सरन पर जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहूं को जापत सो साधु।

तंदे कहां ब्यापै ताहू जो एक शाड़ियन कतै न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम। नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बात अनक जुगत शास्त्र कर पात ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कह जोग न हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै पाग मथोर। पौड़ी या जुग मैं एक कह आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तप करते साथ साथ स्मृत प्रवरते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसे गुसाई ए त्युत नानक तिस बिसरो नाही। सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आवन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए। पौड़ी एउ जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए। सलोक किरतक मामन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी एक है आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो आप दिवायो उवा का अंत ना जाने को जो जो करै सूफन हो एक है ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा। सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छुटी है सक ते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम सेओ तऊ एऊ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मिठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझे सो प्रभ सधू संग लेख।

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना अरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुब देऊ ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या माया।

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जा सरसन हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैराता, जाको दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो नाया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन हो आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अरे एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिखिया दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिरसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़ शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। ओवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी कक्का कारण करता सो, लिख्यो लेखना मेटत को नहीं हो।